सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुर दयाल है, पै दुख विनाशन है। पंगत वचन अनाथ नाथे शरण, नानक पुरख अच्युत है। कोर दोख्यं अनक हत्यं, जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं। मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ठ पस्मं क्रोध, सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौह गिर्द हमारे। राम नाम मन लागा, जम लज्जाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरन पुरख विदाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी। अनत करे तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा। ताती वाउ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। चौ गिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सदगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई। राम नाम ओखद दिया, एक लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई। कहु नानक कृपा पही, प्रभ पहे सहाय। श्लोक जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू नह छुट है, निकट न जाइयो हो दूत। श्लोक महला पंजवा। मन मह चितवो चितवनी, उदम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओवंकार सदगुरु प्रसाद। जय कर कीरत आख्य, करते का हुए बीचारो। तित कर गावो सोहेला, सेव रहो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हो वारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संभत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहु सजन असीसड़िया, ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहु पहुंचा, सदरे नित पवन। सदन हारा सिमरिय, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छिये कर छिये गुर छिये उपदेश। गुर गुर एको वेसनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विश्वे चस्या कन्या पहला, थित्ती वारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनाश्री महला पहला, गगन में थाल रवचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, तूप मला अनरो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तिरी आरती। अनहता शब्दवा जंत पीरी रहाओ। सहस्तम नैन नन नैन है तुहे को, सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस्तम गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दय चानन सब मह चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत स पावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अनिदनो मोहे आहि प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु पर्या। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजुलि पुन वडाहे। कर दंडोत पुन वडाहे रहाओ। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं खंडा हे। ज्यो ज्यो चलहे चुभय दुख पाव है, जमकाल सहे सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वर वडा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी।

ब्रह्म ज्ञानी जिसहे जगाए पियावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सुई बिहा जहो हर गुरते मनह बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे।